महीने यानी लूनार कैलेंडर अरब लोग फॉलो करते थे। खूब लूनार कैलेंडर जब फॉलो हो रहा है तो ये हम इससे एनालाइज कर सकेंगे कि हज़रत इब्राहिम के ज़माने में भी लूनार कैलेंडर ही था, क्योंकि हज़रत इब्राहिम ने हज की बुनियाद डाली। तो ये जो कैलेंडर हम जो फॉलो करते हैं एक इलाही कैलेंडर है। जब ये इलाही कैलेंडर है तो इससे ये हमें नतीजा मिलता है कि खुदावन मुताल की रहमतें इस महीनों के साथ शामिल होती हैं। इसी वजह से कहा गया है कि माह सफ़र नहस महीना है, तो उसमें कुछ गज़बनाक और कहारियत से खुदावन मुताल उस महीने में होती है। इसी वजह से अगर हम सफ़र के महीनों को मुतवज्जे होंगे तो उसमें जो है हम या शदीदुल क़ुवा या शदीदुल महाल यानी शदीद यानी खुदा मुताल को जो जलाल जलाली अस्मा हैं जलाली हवाले से उस अस्मा उस नामों का हम इस्तेमादा ज़्यादा करते हैं ताकि हम उससे बचे रहे। लेकिन जो रहमतों का महीना है उसमें हम देखते हैं कि दुआएं मुख्तलिफ हो जाते हैं, या मरजू हो लिकुल खैर व आमन सखत हो, तो यानी खुदा मुताल उसमें रहमत शामिल होती है। तो ज़ीक़ादा जब जंग नहीं है एक दूसरे से लड़ाई नहीं है तो ख़ुद ब खुद एक इलाही रहमत उसमें शामिल है। तो हमें और आपको ये चाहिए कि इस महीने से भरपूर इस्तफादा करें, खुदा मुताल की रहमत से इस्तफादा करें। और शैतान ज़ईफ़ हो जाता है इस महीने में, रमज़ान में तो उसमें है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इसमें भी जब जंग नहीं हो रही है, जब रहमत खुदा मुताल है, तो शैतान का ज़ाफ़ और शैतान की ज़ईफ़ी हम समझ सकते हैं। इसी वजह से ज़िलहिज के हवाले से है, व वादना मूसा सलासीना लैलतन व अतममनाहा बिअश्र, मूसा को जो है 30 रातों का हमने वादा लिया था कुवे तूर पे, 30 रातें जो ज़ीक़ादा की थे, व अतममनाहा बिअश्र, और 10 रातें हमने उसमें इजाफी करे। फिर ईद है तो जो 10 ज़िलहिज के शुरू 10 रातें हैं उसमें हम नमाज भी पढ़ते हैं मगरिब और इशा के बीच में, और वो आयत पढ़ते हैं, और ये दिन बहुत ही मखसूस और पुर बरकत पुर रहमत और बेहतरीन दिन हदीस के मुताबिक खुदा ने करार दिया ये 10 दिन जो ज़िलहिज्जा के है, और इसी में हज भी है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये 40 दिन यानी 30 दिन ज़ीक़ादा के और 10 दिन ज़िलहिज्जा के, तो आप 30 और 10 मिलाएंगे तो एक छिल्ला बनेगा। और जो उलमाए अखलाक होते हैं सैर व सलूक और इरफान की वादी में जो है आला मकाम उन्हें हासिल हुआ है, वो ये 40 दिन अमल मखसूस अंजाम देते हैं। क्योंकि 40 दिन की हमें हमारे पास रिवायत है कि कोई शख्स पैगंबर ये फरमाते हैं कोई शख्स 40 दिन मुखलसाना खुदा मुताल की इबादत करे और कोई खुदा के लिए अमल अंजाम दे तो ख़ुद ब खुद उसके दिल से हिकमत जारी हो जाएगी, वो उस आला मकाम पे जा पहुँचेगा। 40 दिन मुखलसाना अगर कोई खालसन 40 दिन अमल को अंजाम दे, तो ज़ीक़ादा और ज़िलहिज्जा के 10 दिन मिल के 40 हो जाते हैं, तो एक छिल्ला बनता है। इस 40 दिन में लोग अफराद अमल खूब अमल खैर अंजाम देते हैं, और फिर वो इत्माम होता है ईद से ईदुल अधा से इत्माम होता है। खूब ये 30 दिन तो अभी हमारे हाथ से निकल चुके हैं, अब कम से कम ये 10 दिन हमें जो है चाहिए कि वो दुआ जो नमाज जो है इसका सवाब इतना ज़्यादा है कि जो शख्स वो नमाज पढ़ेगा ऐसा है कि वो हाजी है, ऐसा है कि उसने हज किया। देखिए खुदा एक माँ जो है बहाने ढूंढती है कि अपने बच्चे को किस भी तरह जो है बूसा ले प्यार दे उसको खिलाए पिलाए, बहानों से कोशिश करती है, माँ ऐसी है। तो खुदा भी यही चाहता है कि बहाने से जो है दर रहमत को खुला रखे और मोमिनीन जो है उसकी रहमत में शामिल हो जाए। देखिए हज करना मुश्किल है, लेकिन खुदा ने कहा जो लोग नहीं जा सके उन्हें कहा हज फ़ुकरा है इमाम रज़ा की ज़ियारत है, या रज़वी इमाम रज़ा की बात आ गई फिर से है ना, या फिर वो जो लोग नहीं जा सके ये नमाज़ पढ़े 2 रकत व वादना मूसा सलासीना लैलतन मगरिब और इशा के बीच में, उसको सवाब मिल जाएगा हज का, है ना। तो खुदा ये चाहता है कि जितना हो सके अपनी रहमतों को जो है
نثار کرے اپنی رحمتوں کو۔

जो है भेजे हमारे तरफ और हम उसका इस्तेफादा करें। इसीलिए तो कहा गया है कि शादी करना इसीलिए इतनी सुन्नत है शादी करना कि रसूल ने कहा जिसने शादी नहीं की वो लैसा मिन्ना, मेरे से नहीं है। इतनी बड़ी सुन्नत है। क्यों कहा? क्योंकि शादी की हकीकत यह है कि जो इबादतें घर में हो सकती हैं वो कहीं और नहीं हो सकती। घर में मियाँ बीवी को मदद करे तो ऐसा है कि उसने जो है शहीद का दर्जा पाया है ना, या बीवी जो है मियाँ के लिए एक ग्लास पानी ले जाए ऐसा है कि वो शहादत का दर्जा उसे मिला है, इतना सवाब। ऐसा है कि तमाम साल उसने इबादत की है और एतिकाफ भी किया है। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता है कि वो रहमत जो है हमें हासिल और मिले। यानी खुदा रहमान और रहीम है, मुख्तलिफ बहानों से चाहता है हमारी। एक मोमिन एक दूसरे के साथ मुस्कुरा के मिले, इतना सवाब। हाथ मिलाए, जब हाथ मिलाते हैं तो फरिश्ते जो है अस्तगफार करते हैं दो मोमिनीन के लिए। देखें क्यों इस तरह इतना ज़्यादा सवाब। हम समझते हैं कि ये ऐसे ही बहाने हैं या चुप तशवीक करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, एक साथ अच्छे रहने के लिए अल्लाह इस तरह से बना रहा है। नहीं, इस वजह नहीं है, क्योंकि आखिरत के दर्जात इतने ज़्यादा है कि हमें ये सवाबों की ज़रूरत है। हमारी बैटरी चार्ज होनी है, हमारे पास वो फ्यूल और पेट्रोल होना है कि हम उस दर्जात पे जा पहुँचे। इसी वजह से ये है, ये सवाबात मुख्तलिफ तरीक़ों से। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इस सवाबों के ज़रिए खुदा मुताल पैगंबर तशवीक कर रहे हैं, इनक्रेज कर रहे हैं कि एक सोसाइटी जो है बेहतरीन सोसाइटी रहे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहे, एक दूसरे के साथ अच्छा रहे। इसमें कोई शक नहीं, मगर मकसद दुनिया थोड़ी है। दुनिया में भी इसी वजह से कहा गया है कि जो अफराद इस्लाम पे अमल करेंगे दुनिया में भी उन लोगों के लिए बेहतरीन है, आखिरत पे भी बेहतरीन है। ठीक है भाई, जब दुनिया में बेहतरीन है, जब मोमिनी एक दूसरे के साथ अच्छा पेश आ रहे हैं तो दुनिया तो अच्छी हो गई, मगर दुनिया पे खात्मा थोड़ी है। तो ये तो सफ़र तूलानी है, यहाँ के बाद जाना बरज़ख में, बरज़ख के बाद आखिरत के मनाजिल है, और वो आला मनाजिल की कोई लिमिट ही नहीं है। जिस तरह से रिवायत में पैगंबर की रिवायत में कहा गया कि बहिश्त के घर मकान यानी ये ज़मीन और आसमान को मिला भी दिए तो वो शख्स जो जन्नत में उसका घर ख़त्म नहीं होगा, इस तरह के मकान है। खूब उस दर्जात को हासिल करने के लिए इस किस्म के सवाब होना भी तो ज़रूरी है। तो इसी वजह से इतने ज़्यादा सवाब खुदा मुताल फरमाता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ज़ीक़ादा, अभी खैर ये 30 दिन तो ख़त्म हो गए, मैं एक नुक्ता कह के आगे निकलता चलूँ ताकि मैं भी जो है उस नुक्ते को याद रहूँ और उस पर अमल करूँ। पहली ज़िलहिज्जा से 40 दिन आप लगाइए, क्या होगा? आशूर। तो पहली ज़िलहिज्जा से अब हम और आप आमादा होना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए उस आशूर के दिन की। तो क्यों ना ये 40 दिन हम कोई ऐसा अमल करें मुखलसाना इमाम हुसैन की खातिर। मिसाल के तौर पे ज़ियारत आशूरा पढ़ें 40 दिन, या ज़ियारत वारिस आप पढ़ें 40 दिन, या कोई आम अमल। देखें, एक और नुक्ता मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। हम अक्सर जब 40 और चिल्ला और ये और वो कहते हैं, फिक्र करते हैं कि शायद कोई ज़िक्र ऐसा हो कि हज़ार मरतबे बोलें और सजदे में ये कह दें और 40 दिन रोज़ा रखें और फलां करें और ये करें, ठीक ओके। मगर यूजुअली जो चाल चिल्ला जब काटने की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, जवानों में अक्सर यही होता है। हम भी यही गलती करते थे, जाके पूछते थे आगा बहजत से, कुछ बताइए, कुछ जिक्र दीजिए ताकि हम पढ़ लें और सुपरमैन बन जाए और जो है इरफान और सब चीज़ देखने हमें नज़र आ जाए। तो आगा बहजत कहते थे जाके मेरा जो रिसाला अमलिया है उस पर अमल करो या कहते थे कि जो तुमने सीखा है उस पर अमल करो, अल्लाह खुद जो है दरवाज़े खोल देगा। क्योंकि हमारी तसव्वुर ये होता है कि हम कुछ पढ़ लें और फिर पहुंच जाए, 40 दिन कुछ अमल कर लें। मगर अखलाक उलमा अखलाक ये फरमाते हैं 40 दिन आप क्या करें? वो चीज़ करें जो आम है। आम से मुराद क्या है? जो आम एक मुस्तहब चीज़ है। नमाज मैं 40 दिन टाइम पे पढ़ूं, नमाज शब जो कि दुनिया होना है अल्लामा सैयद काजी तबा तबाही, दुनिया चाहिए नमाज शब पढ़ो, आखिरत चाहिए नमाज शब पढ़ो। 40

जाके सो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। बेहतरीन उम्मत हो से मुराद ये है कि मेहनत करो, बेहतरीन उम्मत हो मुराद ये है कि आगे बढ़ो, ना कि बेहतरीन उम्मत स्टैंप लग गया और लेजी बन जाओ, ये तो नहीं है। बेहतरीन उम्मत जब कहा गया है तो हमें और आपको चाहिए कि हम तलाश और कोशिश करें कि उस कमालात पे जा पहुंचे। यानी हमारे अंदर ये सलाहियत पाई गई है, इसी वजह से तो मोहब्बत अहले बैत हमारे दिल में डाली गई है। हम इस मोहब्बत अहले बैत का कर क्या रहे हैं? इस तो इल्म तौहीद जो हमारे दिल में और हमें सिखाया गया है और सीना बसीना हमारे पास तक पहुंचा है और हम इसे कबूल करें हैं, तो इस इल्म तौहीद और ये जो अहले बैत की टीचिंग्स हमें सिखाई गई है, इसका हम कर क्या रहे हैं? अचार डाल रहे हैं? चाहिए इसे हमें अमल करें। अचार डालने से मुराद ये अचार डाल बस इतना सा चख लेंगे और अमल कर लेंगे और खुश हो जाएंगे? नहीं, इससे तो नहीं होना का है। इस पे पूरी तरह अमल करना है, ये हमारी गजा है, इस गजा से हमें आगे बढ़ना है। जब ये गजा हमें मिलेगी अहले बैत की और कुरान की, और फिर जो है इस दुनिया में भी हम जो है सेहतमंद रहेंगे, कुदरतमंद रहेंगे और वो हकायक को देख सकेंगे जो हकायक तौहीदी है, जिस तरह से असहाब इमाम हुसैन उस हकायक को देखे थे। हैं, वो भी तो आम आदमी थे, हम और आपकी तरह ही थे, और फिर उसके बाद उन्होंने उस इल्म पे और उस टीचिंग्स पे अमल किया और देखने लगे और कहने लगे हमें 70 दबा भी जो है मार दिया जाए, जला दिया जाए, हम इस विलायत पे और इस इमामत पे अपनी जान कुर्बान हो। तो अगर हम उस पे अमल करें, इस दुनिया में भी कुदरतमंद होंगे और आखिरत में भी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यानी मैं ये कह रहा था कि 40 दिन चीज़ें खास करना नहीं है, हज़ार मरतबे ये जिक्र यूनुसी पढ़े या हज़ार मरतबे या हयो या कयूम पढ़े या 40 दिन रोज़ा रखे, इस 11 बजे 10:30 बजे शोए मगरिब हो रही है, नहीं। 40 दिन एक चीज़ सादे, एक चीज़ आदि आम चीज़, ये 40 दिन मैं नमाज शब पढ़ूंगा और ठान ले और उठे फजर के पहले 10-15 मिनट उठे, ट्राई करें, देखें 40 दिन इस तरह से। या ये 40 दिन मैं कुरान पढ़ूंगा, एक सफ़ा एक पेज कुरान, मैं 40 दिन डिसिप्लिन अपने आप को करता हूँ कि मैं छिल्ला बैठ रहा हूँ, मैं कुछ कोई ख़ास रोज़ा वगैरह नहीं, 40 दिन मैं एक पेज कुरान पढ़ूंगा। इमाम रज़ा जो है 3 दिन में एक ख़त्म कुरान करते थे। अभी एक जवान अमरीका का है, किसी ने मुझे फॉरवर्ड भेजा, खुदा उनके सलामत रखे, 18 घंटे में या कुछ एक दिन में पूरी कुरान उसने पढ़ी है ना, एक दिन में। तो ये कोई स्टोरीज नहीं है जब हम ये कहते हैं कि यू नो इमाम रज़ा 3 दिन में कुरान ख़त्म करते हैं। पॉसिबल है जब एक दिन में ये शख्स जो है, इमाम फरमाते हैं मैं 3 दिन में कुरान क्यों थी, कहते हैं कि एक दिन में मैं ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि 3 दिन में इसलिए क्योंकि मैं हर आयत पे तवज्जो करता हूँ, तफक्कुर करता हूँ, उसके माने में समझने की कोशिश करता हूँ। जब क्योंकि कुरान इटर्नल है, उसके मीनिंग्स इटर्नल है, उसके हकायक इटर्नल है, यानी जो चीज़ हम और आप आज समझ रहे हैं वही आयत 5 साल बाद आप पढ़िएगा, कोई नई चीज़ आपको उसी आयत की समझ में आएगी। ये जो एक ब्यूटी है कलाम खुदा की और कलाम अहले बैत यूनिवर्सल। और यूजुअली जब हम एक बैकग्राउंड से उस आयतों को देखते हैं तो उस बैकग्राउंड की वजह से हम कई उसके कमालात और उसके हकायक को नहीं देख पाते हैं। सिर्फ एक उनवाने मिसाल, मौजू से मैं हटता चला जा रहा हूँ मार्जिन में, मिसाल के तौर पे ब्रीदिंग, सांस लेना, योगा में कितना एम्फसाइज किया जाता है, ब्रीदिंग इज सो इम्पोर्टेंट दैट आप सांस लें ताकि आपकी सांस जो है ऑक्सीजन आपके ऑर्गन्स को पहुंचे और पता नहीं फला फला और आप सेहतमंद रहे, और योगा है इस वजह से आप करिएगा, है ना। यानी इंसान इतना गिर गया है अनफॉर्चुनेटली कि उसे सांस लेना भी सही नहीं आता यानी उसे वो सांस लेना भी सिखाना पड़ता है कि तो कैसा सांस ले, यू नो, यानी इतना जो है ही हैज़ फॉलन डाउन सो मच इन टर्म्स ऑफ हिज इंसानियत, ह्यूमैनिटी, इंसान होने का। खूब देखिए, मैं ये कह रहा था सांस, ब्रीदिंग, इसमें शक नहीं, एक ब्रीदिंग एक खास इल्म है,
हिंदुइज्म में हम देखते हैं यू नो योगा जो एक किस्म से ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह की इट्स वेरी पावरफुल टूल व्हीकल टू रीच यू नो स्पिरिचुअलिटी मगर हम क्योंकि उस बैकग्राउंड

ज्यादा नहीं है, तो हम उस आयतों को और रिवायतों को उस तरह से रिलेट नहीं करते हैं. मगर जो फार ईस्टर्नस है, या जो मुसलमान थाईलैंड के हैं, या जो मलेशिया व ईस्टर्नर्स है, फार ईस्टर्नस है, वो जब ये आयतें देखते हैं, दे मे थिंक इन अ डिफरेंट वे. इट्स द सेम आया. जब खुदा खुदा ने कहा व नफख तो फी है मिन रूही, मैंने अपनी रूह अपनी सांस आदम के उसमें बॉडी में डाली है, तो सांस कितनी इंपॉर्टेंट है. तो ये सब जो मेडिटेशन, बिकॉज उसमें कोई हकीकत है, इसी वजह से तो लोग पसंद करते हैं, इसी वजह से लोग करते हैं, कोई ऐसा कोई फेक नहीं है. इसी वजह से आजकल हम फैशन हो गया है, देखते हैं कि ओ ये रिट्रीट वो रिट्रीट, क्या भाई चार दिन आओ सांस लेना सीखो. यू नो व्हाट आई मीन. और फिर अज़कार, जो जिक्र जो है हमारे जो है रिवायतों में, उसी में भी अगर आप तवज्जो करेंगे कितना सांस का उसमें इफेक्ट है. जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तवज्जो आपकी देखें. जब आप एक्सेल करते हैं तो तमाम जो है हरूफ को सही तरह से मखरज वगैरह किरात, वो खुद ब खुद नेचुरली जो है इस्लामिक इथोस में, इस इस्लामी अमलियात में ये सब चीज़ शामिल है. इसी वजह से हम देखते हैं कि आज वहीद खुरासानी 103 साल के हैं लेकिन अभी भी दर्स पढ़ाते हैं, है ना. यू नो नूरी हमदानी 90 ईयर्स के हैं, 98 ईयर्स के हैं, और कहते हैं कि इफ समबडी वांट्स टू डू हाइकिंग आई विल गारंटी आई विल डिफीट दिस पर्सन. यू नो किस तरह से, क्यों अगाय जवादी 94, अगाय सिस्तानी 92, मे अल्लाह प्रोटेक्ट हिज लाइफ एंड प्रोलॉन्ग हिज लाइफ. बिकॉज क्यों, इसी वजह से, क्योंकि ये मशगूल होते हैं इन अस्कार से, इस जिक्र से, कुरान के रिसाइटेशन से. यानी नेचुरली जो है वो इस्लाम पे जब अमल करते हैं तो सेहतमंद भी होते हैं. और फिर इसके अलावा जो उस हकायक और वो ट्रैंक्विलिटी और वो सुकून, जो अक्सर ये कहते हैं तुम सांस लो चार हफ्ते तुम सुकून मिलेगा वगैरह, मिलेगा सुकून, मगर वो फिर जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा. तखयलात होते हैं, इमेजिनेशंस होते हैं, कई तरह ये दिखा वो दिखा. लेकिन जो ये अफराद जो उस कुरान पे और उस जिक्र पे और उस हकायक पे अमल करते हैं, वो तो देखते हैं बरज़ख को, देखते हैं हकायक को, देखते हैं रियलिटीज़ को, देखते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, सुनते हैं. हमारे एक दोस्त थे, वो जीपी डॉक्टर थे, हमारे जो उस्ताद थे उनके आयतुल्ला सआदत परवर, उनका नाम था आयतुल्ला पहलवानी, आगे अल्लामा तबतबाई के शागिर्द थे. जब उनसे कहा गया कि आप रात को कम सोते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं रात को सो नहीं पाता क्योंकि तमाम दीवार और दर जो है जिक्र खुदा और मुताल कर रहे हैं. जब जिक्र अल्लाह का हो रहा हो तो यू कांट रिस्पेक्ट करना पड़ता है, इस वजह से मैं कम सोता हूँ. क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस दी उनको कि आप ज़रा सोया करें. तो यानी बोले का मुराद यह है कि जब हम हकायक पे अमल करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे अपने आप को, तो उस रियलिटी को हम देखने लगेंगे. सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. मौजू असली पे तो हम पहुँचे ही नहीं, यही हाशिए में की गुफ्तगू में वक्त जो है तमाम होने लगा है, क्योंकि वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं है. लेकिन एक मैं नुक्ता नवे इमाम के हवाले से कहता चलूँगा और फिर जिक्र मुसीबत और आपकी जहमत को तमाम करूँगा, वो ये है कि देखें तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम, अज़ अमीरुल मोमिनीन ता हमारे हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी, खुदा मुताला उनका ज़ुहूर जल्द अज जल्द फरमाए और हमें उनके अमान और अंसार में शामिल फरमाए. जो सबसे ज़्यादा मुहिम और इम्पोर्टेंट नुक्ता जिस पे वो लोग एम्फसाइज कर रहे हैं वो है विलायत. विलायत, विलायत से मुराद इमामत भी है, विलायत से मुराद मोहब्बत भी है. इस हकीकत को समझना विलायत की. और इसी वजह से हम देखते हैं कि जब नवे इमाम 5 या 7 साल की बरस में इमाम मंसूब किए गए हैं खुदा मुताल से, वो दर्जे पे फायज है. न सिर्फ दुनियावी हवाले से जो है सिर्फ कहा गया कि इमाम है और कबूल कर लो, नहीं, उन्होंने प्रूफ किया है कि वो इमाम है. जब मामून चाहता था कि अपनी बेटी शादी में दे तो उसने एडवाइस ली उलमा से, उन्होंने कहा ये तो बच्चे से, तो आ जाओ मुसाबिके के लिए, एक कॉम्पिटिशन के लिए बुलाया गया सबको, सवाल किया काजी उल खुज़ात के टेस्ट करने के लिए नॉलेज कि अगर हाजी हज का भी सीज़न है

शिकार करे तो उसका हुक्म क्या है। तो इमाम ने एक सवाल को 10 तरीकों से पूछा उससे। ये हाजी औरत थी या मर्द था, ये हाजी हज तमत उम्र तमत्तों में था या हज तमत्तों में, ये हाजी क्या हरम के जो पैरामीटर्स है उसके अंदर था या उसके बाहर था, क्या यह शिकार रात को या दिन को हुआ, क्या यह शिकार परंदा था या जानवर था, मुख्तलिफ फैसेट्स एक सवाल के। तो इससे क्या प्रूव मिलता है? इससे प्रूव मिलता है कि दिस पर्सन, इसके अंदर नॉलेज है, ये समझ गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल किया। खुद जो काजी अल खुद्दात था उस महफिल में, उसका जॉ ड्रॉप हो गया, वो परेशान हो गया, लोगों ने देखा। न सिर्फ एक सवाल, दूसरा सवाल तलाक के मुतालिक, उसी तरह से इमाम ने जवाब, यानी इमाम खुद ब खुद प्रूव किया ये अपनी इमामत को और अपने इल्म को कि ये इल्म अस्सरफ़ खुदा मुताल है, और विलायत और इमामत अस्सरफ़ खुदा मुताल है, और ये विलायत और इमामत मखसूस लोगों के लिए है जो वो मोहब्बत को समझ सके कि उनके दिलों में वो ज़र्फियत है। जब हुसैन का नाम आ जाए तो दिल जो है मचल जाए। जब तसव्वुर करें हरम इमाम हुसैन, दिल चाहे कि बस अब भी पहुंच जाऊं, ये सीढ़ियां मैं उतरूं और हरम इमाम हुसैन में पहुंच जाऊं। ये मोहब्बत है, ये विलायत, ये सब के लिए नहीं है, टाइम लगता है। मगर खुदा मुताल हमारे वालदैन को गरीक रहमत फरमाएं अगर इस दुनिया में नहीं है, अगर उस दुनिया में सेहत तो तंदुरुस्ती से रखें। ये उन्होंने हमें अता किए, ये उनकी जहमतें हैं, उन्होंने जहमत, और हमारे जवानों को भी चाहिए इसी तरह से हम ट्रांसफ़र करें तरबियत के हवाले से। बहुत बहुत मुहिम है, वेरी इम्पोर्टेंट कि इस तरह से ट्रांसफ़र करें ये विलायत और मोहब्बत, कि हम कबूल करें जो इमाम कह दे और जो खुदा ने नस्ब किया है जिसे इमाम, वो कबूल करें। और ये हम देखते हैं कि तमाम मासूमीन ने इसे कंटिन्यूसली एम्फसाइज किया है, इल्म के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए, एतिकाद के ज़रिए इस विलायत को समझे, इस हकीकत को समझे। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, यहाँ पे तमाम अफराद अपने दिल पे आप हाथ रखेंगे, कहेंगे कि हाँ, जब हम ज़ियारत करबला गए, इमाम हुसैन ने हमारी ज़ियारत को कबूल की है, एक ख़ास हमें जो है नज़र की है। हर शख्स ये कह सकता है कि इमाम हुसैन आपके साथ ख़ास रिलेशनशिप रखते हैं। इसी वजह से जब रज़विया का महीना है, इमाम रज़ा के पास एक शख्स आता है और कहता है कि मैं आपको इमाम मानता हूँ, मैं जानता हूँ आप इमाम हैं, लेकिन इमाम हुसैन कोई ख़ास चीज़ है हमारे लिए, एक ख़ास मोहब्बत है उस इमाम की। तो इमाम रज़ा भी यही फरमाते हैं कि हाँ, मैं कबूल करता हूँ, मेरी भी ख़ास मोहब्बत है हुसैन से। कहा गया है कि जिस तरह से सजदा जो है आयत सुनने पर वाजिब हो जाता है, वाजिब सजदा, उसी तरह से ये नाम हुसैन है। जब भी नाम हुसैन आ जाए तो ख़ुद ब खुद दिल जो है मचलने लगता है, ख़ुद ब खुद आँखों में आंसू आने लगते हैं। ये है हुसैन, इमाम रज़ा फरमाते, जिस तरह से सजदा पे सजदा वाजिब होता है, उसी तरह से नाम हुसैन से आंसू आना वाजिब हो जाता है। शब जुमा भी है, शब ज़ियारत आबा अब्दुल्ला हुसैन भी है, और नज़दीक है उस शब से भी जो शहादत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम भी है। कहा गया कि जब इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया, ज़ौजा ने जहर दिया, उम्मुल फ़ज़ल ने जहर दिया, और जब जहर दिया गया, ये जहर असर करने लगा, इस उम्मुल फ़ज़ल ने इमाम को एक हुजरे में रख कर बंद कर दिया, खुफल डाल दिया, और अपने कनीज़ों को बुलाया, कनीज़ों को बुला के कहने लगी कि तुम आओ और यहाँ पर गाना और बजाना करो और थालियां मारो और शोर करो, क्योंकि इमाम की आवाज़ जो है हुजरे से बाहर नहीं आने पाए, दूर जाने नहीं पाए। इमाम तड़प रहा था, कमरे में तड़प रहा था, जहर दिया गया है, पानी तलब कर रहा था। इस कनीज़ों में से एक कनीज़ को रहम आया, कनीज़ दौड़ती हुई जाकर पानी ले आई। उम्मुल फ़ज़ल देखती है पानी लाया गया, दरवाजे पे पानी देने जा रही थी, उम्मुल फ़ज़ल ने इस गिलास को लेकर पानी ज़मीन पर फेंक दिया और कहने लगी तुझे ये पानी नहीं मिल गया। उसी तरह जिस तरह से हुसैन तिश्ना लब करबला के मैदान में थे, उसी तरह से हमारा जवान इमाम 25 साल पानी के लिए तड़पता रहा, लेकिन पानी नहीं दिया गया। इमाम की रूह परवास कर, जब रूह परवास कर गई तो किसने कहा, कनीज़ों को बुलाई और कहने लगा कि इस लाशे को ऊपर ले जाकर फेंक दो।

ऊपर ले जाकर छत पर फेंक दो, टेरेस पर फेंक दो। जब इस कड़कती हुई धूप में वो लाशा रहा तो बर्ड्स पिजन्स आकर अपने पर बाल अपने परों को फैला दिए ताकि ये इमाम के लाशे को सूरज की किरणें अज़ियत ना करने पाए। लेकिन मैं कहूँगा या ला यौमुक अब अब्दुल्ला, हुसैन का लाशा किस तरह से था? जब इमाम ज़मान इसीलिए कहते हैं कि मैं खून के आंसू रोता हूँ, क्यों कहते हैं कि वो लाशा न जिस वो लाश पे सर भी नहीं था और वो लाश में कोई लिबास भी नहीं था, ये था हुसैन। इसी वजह से जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार करके आशूर के दिन ले जाया जा रहा था, ग्यारहवीं के दिन ले जाया जा रहा था, तो जब इमाम अब उस लाशे को देखते हैं तो तड़प जाते हैं और ज़ैनब कुबरा ये फरमाती है आगे बढ़कर इमाम सज्जाद के शाने पे हाथ रख कर कहते हैं कि बेटा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि जब पुरसा दिया जाता है तो गम कम हो जाता है। और ज़ैनब ये कहती है अगर मैं नहीं जाती सज्जाद के पास तो सज्जाद उस बाप के लाशे को देख के उसकी रूह परवास कर जाती। और ज़ैनब इस लाशे को जब देखती है शायद वो किस्सा याद आ जाता है ज़ैनब को कि जब ज़ैनब मदीना में दोपहर में आराम फरमा रही थी, हुसैन घर में आते हैं, देखते हैं कि बहन सो रही है लेकिन ये सूरज की किरणें उस पर अजियत कर रही हैं, अबा के दामन को हुसैन फैलाते थे और इतनी देर तक वहाँ ठहरते हैं कि हुसैन के पिशानी से पसीना आने लगता है। और जब ये पसीना ज़ैनब पे गिरता है ज़ैनब की आँख खुलती है, देखती है भैया उसे, तो ज़ैनब ये कहती है भैया मेरे पास चादर भी नहीं है, तेरा लाशा इस तरह से पड़ा है, मैं इस चादर को फैला देती। अला लानतुल्लाह अला कौम अज़्ज़ालिमीन सयालमुन लदीन अज़लम अय्यमुन क़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा तुझको वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस क़लील इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे तमाम मरहूमीन को गरीख रहमत फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा, उन्हें अहले बैत अतहार के साथ महशूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस दुनिया में हमें हुसैनी करार दे, बरज़ख में भी हुसैनी करार दे, आखिरत में भी इमाम हुसैन के साथ महशूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे बारहवें इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे जवानों ने इम्तिहानों के लिए तैयारी कर रहे हैं, बाज़ इम्तिहान दे दिए हैं, तमाम जवान मोमिनीन जो इम्तिहान दिए हैं उन्हें इम्तिहानों में कामयाबी अता फरमा, और जो इम्तिहान के लिए आमादा हो रहे हैं उनके इम्तिहानों को भी कबूल फरमा, उन्हें भी कामयाबी अदा फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मोमिनीन हज के लिए गए हैं उनके हज को कबूल फरमा और उनको सेहत और सलामतियों के साथ अपने घरों को वापस लौटा दे। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम मराजेज़ा मखसूस अनायतुल्ला सिस्तानी के तूल उम्र सेहत और तौफीकात इनायत फरमा। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم رحم الله من قرأ الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات اللهم صل

वो है जो सब्र को इख्तियार करे, अपने एहतियाज को दूसरों के सामने बयान न करे। कैसे कभी कभार कहा जाता है ना, फ़कीर जब साथ फैला देता है सबसे पहली चीज़ जो उसे छिन जाती है वो इज़्ज़त है, जो सब्र कर लेता है परवरदिगार आलम उसे दुनिया में और आखिरत में अजीज़ बना देता है। तो फ़क्र को गले लगाना है सब्र के साथ, सब्र को इख्तियार करो। शहवात अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करो या ठुकरा दो। कभी कभार ऐसी शहवतें हैं, ऐसे टेम्पटेशंस हैं, ऐसे डिज़ायर्स हैं जिसे कम करने का हुक्म नहीं दिया। इमाम फरमाते हैं उन्हें ठुकराना पड़ेगा, उन्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं, ये तो मकरूह है, ये तो इसमें गुनाह कम है, ये तो छोटा गुनाह है, ये तो बड़ा गुनाह है, ये कहकर इंसान कभी कभार मुमकिन है डिज़ायर्स की तरफ जाए। इमाम फरमाते हैं कुछ शहवतें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हें ठुकराना पड़ेगा। कई शहवतें हैं, ये शहवत सिर्फ वो नहीं जो इंसान टेम्पटेशन की बात करे, लस्ट की बात करे, मुमकिन है पावर की शहवत भी हो, मुमकिन है इंसान की कुदरत के एतबार से, इंसान ताकत के एतबार से जो आज की दुनिया में हमें नज़र आती है कि इंसान उसका शिकार हो जाता है, उन डिज़ायर्स में इंसान ड्राउन हो जाता है। इमाम फरमाते ये चीज़ें तुम्हें तबाह कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर दें। कितनी कौमें ऐसी हैं जिन्होंने शहवात की तरफ कदम आगे बढ़ाया, उन शहवतों ने उनको गर्क कर दिया। मुमकिन है पावर की हो, मुमकिन हो पोजिशन की हो, मुमकिन है पैसे की हो, ये वो शहवतें हैं जो इंसान को मुमकिन है दीन से दूर कर दें और हिदायत से दूर कर दें। इमाम ने फरमाया कोशिश करो कि वरफद शहवात, शहवात को ठुकरा देना। और चौथी वसीयत इमाम की, वो खालिफिल हवा, दुनियादारी नफसानी ख्वाहिशात की मुखालिफत करो। कभी कभार दो चीज़ें इंसान के सामने खड़ी हो जाती हैं, एक तरफ दुनिया है और दूसरी तरफ आखिरत है। कभी कभार दोनों मिल जाती हैं, बिस्मिल्लाह। कभी कभार सिर्फ दुनिया है आखिरत का तसव्वुर नहीं है, बिस्मिल्लाह। कभी आखिरत है दुनिया वहाँ नहीं है, बिस्मिल्लाह। कभी कभार दोनों आपस में टकरा जाएं, तो इमाम फरमाते हैं उस दुनियादारी और ख्वाहिशात नफ्स की तुम्हें मुखालिफत करनी होगी, तुम्हें अगेंस्ट खड़ा होना होगा। नहजुल बलागा में मौला कहना थे जहाँ दुनिया की तारीफ़ की है, दुनिया की मदह की है, अगर दुनिया बुरी जगह होती, दुनिया पर चलना अगर बुरा होता, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बेहतरीन बंदों को इस दुनिया में ना भेजता। बेहतरीन बंदे अनबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं, रसूल दुनिया में आए, हमारे नबी आखिरी नबी जो परवरदिगार आलम के ख़जाने के बेहतरीन इंसान है, उससे बेहतर इंसान कहाँ है दुनिया में, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर भेजा। इसका मतलब दुनिया बुरी जगह नहीं है, हमने दुनिया को बुरा बना दिया है, हमने धोखे इतने दिए, झूठ इतना हमने बोला। दुनिया, लोग कहते हैं धोखे की वजह से, झूठ की वजह से दुनिया बुरी है, वरना दुनिया बेहतरीन जगह है। हत्ता यहाँ तक कि मौला कायनात फरमाते हैं अग दुनिया ही वो जगह है जहाँ पर अल्लाह की इबादत की जा सकती है जी। चांद पर इबादत का तसव्वुर नहीं है, सूर्य मार्स पर इबादत का तसव्वुर फ़िलहाल नहीं है, देखा जाएगा। मौला कायनात फरमाते दुनिया ही वो जगह है जहाँ तुम रहते हो, ज़मीन ही वो जगह जहाँ तुम सजदे कर सकते हो। ये तौफीक छिन जाए तो फिर कोई मकाम तुम्हारे लिए सजदों का नहीं है, ना कब्र में तुम्हारे लिए सजदे का हुक्म होगा, हत्ता जन्नत में भी सजदा और क़याम का हुक्म नहीं है। ये दुनिया है जहाँ पर इंसान सवाब कमा सकता है, लेकिन अगर टकराएं दोनों में, दुनिया और आखिरत में टकराव हो जाए, मौला कायनात फरमाते दुनिया एक तरफ है और आखिरत दूसरी तरफ, तो तुम्हें दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, आखिरत का इंतखाब करना पड़ेगा। क्यों आखिरत का इंतखाब करना पड़ेगा, लअन्ना खैरुन व अबका, इसलिए कि आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली है। दुनिया जितनी भी बेहतर हो वो तुमसे छीन ली जाएगी, वो लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, प्लेस बॉन्ड है, और इंसान की ख्वाहिशात यहाँ पूरी होने वाली नहीं। आखिरत को इख्तियार करो, वो बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। इमाम ने फरमाया खालिफिल हवा, इसलिए जो लोग नफ्स की मुखालिफत करते हैं, अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, डिज़ायर्स को फॉलो नहीं करते, उन लोगों का जहाद दर हकीकत जहाद
اکبر کہا گیا. پیغمبر اسلام نے دیکھا ایک نوجوان جو جنگ سے لوٹ رہا تھا, وار سے لوٹ رہا تھا, بدن میں اس کے وہ ملٹری یونیفارم موجود تھا, کپڑے پہنے ہوا تھا, فخر سے چل رہا تھا, ہاتھ میں اس کے پتہ نہیں تلوار ہو یا کوئی ویپن بھی موجود تھا. پیغمبر اسلام نے اس کے چہرے کو دیکھا.